में 2008 का दोहा कॉन्फ्रेंस शामिल है जिसने लुबनान की जदीद तारीख की एक नाजुक मरहले का खात्मा किया, आईनी इदारों को दोबारा फ़ुआल बनाया और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार की। सदर जोसेफ ऑन ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी ताज़ियत करते हुए कहा कि वह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए लुबनान की मदद और सियासी और इंसानी इकदामात के ज़रिए मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और आवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अल सानी ख़ानदान, मरहूम के चाहने वालों और कतरी आवाम से भी दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए लुबनान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इआदा किया और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपनी वसी रहमत में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात ने रियासत कतर के साहिब सुमो अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर 4 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान करते हुए मुल्क भर में और बैरून मुल्क अपने तमाम सफारत खानों और सफारती मिशन्स पर कौमी परचम सरनगों रखने की हिदायत जारी की है। कल इतवार को जारी एक बयान में सदारती अदालत ने कहा कि सोग की मुद्दत इतवार से शुरू होकर बुध तक जारी रहेगी। बयान में अल्लाह ताला से दुआ की गई कि वह साहिब सुमो अमीर अलवालिद को अपनी बेपाया रहमत से नवाजे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रियासत कुवैत ने रियासत कतर के साहिब सुमो अमीर अलवालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर 4 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान करते हुए मुल्क भर में और बैरून मुल्क अपने सफारती मिशन्स पर कौमी परचम सरनगों रखने की हिदायत जारी की है। इतवार को जारी एक बयान में अमीरी दीवान ने कहा कि रियासत कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने 4 रोज़ा सरकारी सोग मनाने और सोग की मुद्दत के दौरान कौमी परचम सरनगों रखने का हुक्म दिया है। अमीरी दीवान ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो साहिब सुमो अमीर अल वालिद को अपनी रहमत और मगफिरत से नवाजे और उनकी कौम के लिए अंजाम दी गई गिरा कदर खिदमात का उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। सामिन, ये थी कुछ अहम खबरें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। स्टूडियो से तकनीकी मावो नूर और न्यूज़ स्टूडियो से इस्माइल ख़ान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।